0: श्रोताओं, बसे पिंड अपिंड में, यहाँ पिंड का अर्थ है हमारा यह शरीर, यह भौतिक अस्तित्व, और अपिंड का अर्थ है वह निराकार परमात्मा, वह चेतना जिसका कोई रूप या आकार नहीं है। कबीर कह रहे हैं कि वह असीम सत्ता इस असीम शरीर के भीतर बसी हुई है, एक सीमित शरीर के भीतर बसी हुई है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नन्ही सी बूंद के भीतर पूरा समंदर छिपा हो। ता गति लखे न कोई, कबीर कहते हैं इस खेल की गति, इस चमत्कार को कोई देख नहीं पाता। लोग बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, पर अपने भीतर झांकने की फुर्सत किसी को नहीं है। कहे कबीर संत हो, बड़ा अचंभा मोही। कबीर साहब कहते हैं कि संतों, मुझे इस बात पर बड़ा अचंभा, बड़ा आश्चर्य होता है कि अमृत का घड़ा पास में है और प्यासा दर दर भटक रहा है। कबीर हैरान है कि लोग उस विराट को मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह उनकी हर धड़कन में धड़क रहा है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुककर खुद को एक अलग नजरे से देखिए। हम खुद को बहुत छोटा, कमजोर और लाचार समझते हैं। हमें लगता है कि हम बस हाड़ मांस का एक पुतला है, पर कबीर साहब की माने तो आप एक चलते फिरते ब्रह्मांड हैं। आपके भीतर वह सारी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें आप बाहर खोज रहे हैं। आज कोशिश कीजिए अपनी आंखें बंद करके अपने होने को महसूस करने की। अपनी सांस के उस प्रवाह को देखिए जो आपको उस अनंत से जोड़ता है। याद रखिए, आप इस संसार में नहीं हैं, बल्कि यह पूरा संसार आपके भीतर बीज रूप में मौजूद हैं। उस अचंभे को पहचानिए, फिर आपको कभी खुद को अकेला या छोटा महसूस नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: मम्मी के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा.

0: शायद तू क्या कह रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284449433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर.
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी. मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका. और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart touching.
1: मम्मी के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: पसीना है पसीना,
1: बाप रे।
0: कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना ढक ढक ढक। बात को आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से,
1: मर जाऊं
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: amore mio, dove vai sei tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मी आर्जस्वरा आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: अभी न जाओ छोड़ कर

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर.
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी. मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरे। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: जो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?

0: भेजा सरकार।
1: कहने का है कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे